तू बेअंत को बिरला जाने को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सब मुन इंद्र महा शिव जो करी तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा

ऐसी कृपा मुहे करो। एक साखी है, सुकेत मंडी दा राजा आया, कह लगा दसम पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नो मेरे ते कृपा करो। सामने एक सिख सी जो घोड़िया की लिद हटा के तबेले चो निकलिया सी, वो कवि भी सी, 52 कविया विचो। महाराज कहन लगे राजे नू तेनू ओदे वर्गा बना दिए। राजा कंबिया, कहन लगा महाराज तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो। महाराज ने धन्ना सिंह नू आवाज मारी, भाई धन्ना सिंह जी दर्शन दियो, आओ मेरे कोल। आ गए, कहन लगे भाई धन्ना सिंह जी कुछ मंग लो। धन्ना सिंह कहन लगा तुसी कृपा दे सागर हो, अगे कृपा कीती होर कृपा करो। महाराज कहन लगे तेनू इस राजे वर्गा बना दिए। वो भी कहन लगे तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो, इहदे वर्ग। महाराज कहन लगे राजन तू इहदे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, इह तेरे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा है, दोनों कहिंदे भी कृपा कर। असल दात उहदा नाम है, इह उहनूं दिंदा जिहदे ते उह कृपा करदे। इस शब्द विच भी ये मंग मंगी है, ऐसी कृपा मोहे करो, तेरे बख्शियां दे चरण होण ते मेरा मथा लग जाए, सा संगत दी चरण धूड़।

सेवा प्रवान करने संतान की जो भी आपकी दुनिया की कम्बा का जन उचार की सूरत में किस वेले करता है गुरु दरबार में विशाल भी बनिए अते हम आप इन अमृत ने कीर्तन रागा दे विच गुरु ग्रंथ साहिब की मर्यादा अनुसार गुरु अर्जन साहिब की मर्यादा अनुसार सर्वन कीता है स्वतंत्रता दे आओ अंत दे विच सर्वत माई भाई कितने गुरु चरणा की बैठे हो छोरिया की अरदास बेनती दो दिन करनी है सतगुरु दात्या की हे काल पुरख सर्व शक्तिमान परम पिता परमेश्वर कृपा करो साडे छोरिया विच अपने पवित्र नाम की कृपा आओ जपो सारे लवाओ हाजिया कोई रिश्ता फायदा जाए।

बिन बाजे कैसो नृतकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जेवा कहा को बकता, बिन श्रवना कहा को सुनता। बिन नेत्रा कहा को देखे, नाम बिना नर कहीं न लेखे। बिन विद्या कहा को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित। बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हों त्याग कहाँ को त्यागी। बिन बस पंच कहाँ

गोविंद ना भजे अहं बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे। नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे। छापर बांध सवारे प्रण को द्वारे पावक जारे। कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन ते डारे। मोढ़े वस्त्र का जर में

सब कुछ अर्पण कर। पर मेरे पातशाह कहंदे ने उना दे तन मन अर्पण करी जिन्हां ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते। फिर उन ओ परचून दे मालिक नहीं हुंदे, ओ तां थोक दे व्यापारी हुंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा है वाहिगुरु तों।

ऐसे महापुरखां दी सिर्फ दर्शन ही कीतियां ओ पाप मुक जांदे हन खत्म हो जांदे नहीं।

मनुख भगती करे जन्म मरण तो छुटकारा नहीं मिलता। पर पातशाह कहने ने बड़ा सुखैन तरीका है, महापुरुषां दे चरणा दी पूजा कर, उन्हां दे चरणा ते सियाणपा छड़ के जदों अपना सिर रखेगा, बस बाबा जी कहंदे ने जवां दी मार तो तैनू छड़ा लेंगे। कबीर जी ने भी आखिया

तरंगी, तेरे शाम है मोग दाती अपंगी, तेरे शाम है मोग दाती अपंगी, जाऊ म्यान ते वीर तो कौ सड़क के, जाऊ म्यान ते वीर तो कौ सड़क के, परले काल में सिंह बनके, परले काल में सिंह बनके, तू ही तेग तलवार श्री खग खंडा, तू ही तेग तलवार श्री खग खंडा, महारुद्र रूपा विरूपा प्रचंडा, प्रजा दंडनी दंडनी है सगौती, प्रजा दंडनी

पावन बाणी का कीर्तन आप जी सुन रहे हो। कुछ चुनवे शब्द मैं तुहाडी सेवा पढ़ने लिए हाजिर होया। गुरु गोबिंद सिंह जी दस रहे कि मेरा नाम गोबिंद सिंह है और मैं शस्त्र का खिलाड़ी हूं, शस्त्र का पुजारी है। मेरा जो वाहिगुरु है वो शस्त्र है और शस्त्र तो बिना मैनू होर किसी का आसरा नहीं। इसलिए मैनू यह भरोसा है जिसके कोल शस्त्र है और जिस दा शस्त्र दे उत्ते पूरा कंट्रोल है, यानी पूरी आराधना जिसकी शस्त्र दी, उसकी कदे भी हार नहीं हो सकती। आज तू ही जग वीर, तू ही निशानी जीत की। ये जो शस्त्र है, जो शस्त्र का खिलाड़ी है, शस्त्र का पुजारी है, शस्त्र की जो पूजा करता है और शस्त्र नू चलाना जानता है, उसकी जंग विच हार नहीं हो सकती और सदा ही अकाल पुरख की कृपा द्वारा उसकी हर मैदान फतेह होती है। यह गुरु गोबिंद सिंह का मुख वाक्य। और नाल उन्होंने एक गल होर दसी, उन्होंने कहा मैं सिंघां नू पंज ककार की रहत दिती है, ते रहत दे नाल पंज शस्त्र भी दिते ने। वो रहत की है और शस्त्र की ने, उन्हां दी मुख वाक बाणी तुसी श्रवण करो। गुरु साहिब

पंच शस्त्र प्रवान तीर, तीर मतलब निजा, तफंग तीरो तफंग बंदूक, बड़ो राम जंगो रिवाल्वर, घणक धार अणियर धनसबान और उसके तीर जड़े ने अणियर वर्गे होने चाहिए, अणियाले तीर जड़े दूसरे तीर ने ना वह वज जाना ते मुड़के कढ़े जा सकते हैं ते आदमी बच सकता है, पर अणियर तीर जड़े ने वह बाहर नहीं आते, जदों एक बारी अंदर तस जाना जो खिचोगे नाल ही अंदर भी नाल ही लै आनगियां, उहदियां दो कड़ियां हुंदियां एवं मुड़िया हुई है, एक सीधी हुंदी ते दो एवं मुड़िया हुंदी, सीधी दे अंदर चली जाती तो बाहर आने लगे दूजिया जड़िया ने नाल फिर कहिंदियां हुण आ जा अकाल पुरख के कोल ही चल रहे हैं। हां जी, इसलिए जे मेरिया भैणा कोल कहते यह होंगे ना शस्त्र दिल्ली, यह हाल नहीं सी होना जिहड़ा होया, पता की हाल होया, सरदार साहब होने शीसगंज साहब दर्शन करने लिए आ रहे, उन्होंने सरदार नहीं पूछे मोटरसाइकिल से बैठे हुए, उन्होंने नहीं सी पता भी अज यह भाणा वर्तना है, डांग दे के मोटरसाइकिल दे विच तारा च डेग के ते वारी वारी उन्हें ड्यूटियां लाई हुई सी, एक ने सरिया मारिया सरदार जी के सिर ते वो थले डिग पे, दूसरे ने धार मारी पिस्तौल पेट्रोल की, तीसरे ने वो जिदे नाल सिगरट पींदे हुंदे आ ऐ करके वह दाली भी सिखा की झट फूकते उन्हें अग लाती उड़न डह गए, जिहड़ी बीबी जी सी बेचारे बड़े मायूस घबरा गए, भजन की कोशिश पर दुष्टा को कित्थे भजना है, कोल ना ते तीर ना तफंग ना राम जंग ना तणक तार अणियर ना कबंध कोरड़ा, ते कोल की सी जा राती टीवी वेख के आए सी ते जाके हुण वी सी आर वेखना सी, ये कोल सी ते बाकी कुछ नहीं सी, जा गहने पाए सी, उन्हां दुष्टा ने एक ने इधरों फड़िया दूसरे इधरों फड़िया कपड़े फाड़ के सड़क दे विच सरेआम बेइज्जतियां कीतियां, उन्हां दियां जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह दे सिंघां ने इन्हां दियां धीआं नूं दुष्टा दे कोलों छुड़ा के ते घरीं जा के छड के बाइज्जत तौर ते छड के ते आउंदे सी, उन्हां उन्हां दुष्टा ने यह नहीं सोचा कि भाई इन्होंने कभी साडे ते उपकार किए, ध्यान दो कोई नहीं जकारे फिर छड़ लेंगे जरा हुण कर लीए, यह नहीं सोचा गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह कोल बामण तिलक लाया होया जंजू पाया होया ते बहुत रोंदा होया करलाउंदा आया कहिंदा महाराज मैं बच्चा व्याह के लिया रहा सा ते मेरी नूह नूं आ दुष्ट जिहड़े ने मुगल दुंबे खाण वाले पूरा पूरा बकरा खाण वाले वह खो के लै गए, गुरु गोबिंद सिंह साहब एवं सिंह सजे सी उन्हें आख्या भाई अजीत सिंह जी तुसी उठो अपने साहबजादे नूं कहो उठो नाल दो चार सिंह लै लो इन्हां कोलों एड्रैस लै लो और उस देवी नूं हुणे ही आजाद करा के लियाओ और इस पंडित दे घर जाके आप पूरी हिफाजत नाल छड के आओ, उन्हां पंडितां ने अज उन्हां अजीत सिंह दीआं भैणां नूं बाजार दे विच नंगियां करके साडी अखां दे सामने इन्नी बेइज्जती की जो मेरे को कई नहीं जाती, लेकिन मैं कहना सिंगो यह पांच शस्त्र रखो, धनखधार अणियर ऐसे तीर रखो जो बाहर आने लगे नाल यांदरा, कमंद कोरड़ा एक ऐसा शस्त्र हुंदा है, यह सरिये लैके आते सी ना मारन, वह सरिया लैके जदों आवे कमंद कोरड़ा ऐ भुआ के सरिये के मारी दा, वह फिर ऐ वल पा के सरिये नूं काबू कर लैंदा, खिच के सरी अगले का अपने हाथ च फड़ लेता, उन्होंने हथे कर छिटी एक ही छुट्टी का बस फिर बोले सो दिया, इस वास्ते अज तुसी बाबा दीप सिंह साहब शहीद आजम का दीवान मना रहे हो, यह तुसी प्रण करके जाओ शस्त्र की धार नहीं बनना डरना नहीं, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने यह खंडे का अमृत सन छकाया, खंडे का अमृत क्यों छकाया जी, कृपान का भी शिकार सकते होर भी किसी चीज का, खंडे का खंडे शस्त्र संस्कृत में मौत कहते हैं, मौत खंडा खंडे का अर्थ है मौत, ते महाराज ने उन्हें पानी घोल के सिख नूं पियाता, मौत नूं घोल के सिख पी गया, सिख गुरु का सिंह मौत नूं घोल के पी गया, ते दुष्ट कहिंदा मैं तेनूं वेख लूंगा मार दूंगा, तो सिंह आंदा
ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮੈਂ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ, ਆਵੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਏਕਲ ਰਾਹੂ ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹੂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਸ਼ਸਤਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ।

बिना शस्त्र के संग नरंग भेड़ जानो, बिना शस्त्र के संग नरंग भेड़ जानो। गुरु गोबिंद सिंह का मुखवाक है, बिना शस्त्र जे आप केस धरे हुए होण ते शस्त्र ना होवे ते गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सिखो भेड़ बकरी तो वध तुसीं कुछ नहीं। इसलिए तुहानू भेड़ बकरियां नहीं मैं बनाया, मैं तुहानू सिंह बनाया शेर। और शेर पता कौन हुंदा? शेर मैदान जंग विच उत्तों छाल मार के आउंदा, छाल मार के। मैं तुहानू दसदा दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साड़न लई 12,000 की टोली आई, 12,000 की, 4,000 ते आया इधरों फतेहपुरी वालों, ते 4,000 आया लाल किले वालों, ते 4,000 सामने उस स्टेशन वालों आया, ते जेड़े सी ना उन्हां दे खिलारे होए बंदूकां लैके वह भज गए, जेड़े दुष्टां दी फौज सी वह भज गई, ते दो चार साढ़े सिख बेचारे लागे कोतवाली उन्हां नूं पिस्तौल ते उन्हां रात ही खोले सी ते डंडे इन्हां ने हाथ च फड़ाते सी, वह डंडे लैके शीशगंज अंदर आण बड़े। असीं डाय सा कीर्तन कर बाबे ने साडे राम जपो जी ऐसे ऐसे हां जी, ए राम ही डे सी जपण। उन्हें सिखा आण के कहा भाई खालसा जी हुण राम जपना छड़ो ते खंडे खड़काओ, 5 मिंट तुसी होर चुप कीते रहे ते तुहानू इन्हां ने उत्ते ही आण के फड़ के जीवंदे साड़ देना, तीआं तुहाडीआं खिच के लै जाणियां, आ गोलकां गालकां लुट के गुरु साहब की बेदबी हो जानी। 5 मिंट केवल रहिंदे, जे कुछ कर सकदे ते कर लो। यह साडे सिंह साहब बहादुर महाराज नूं नमस्कार बख्शण। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने थापी दिती और इन्हां कोल शस्त्र सी जिहड़ा सानू बाबा महाराज बाबा जरनैल सिंह जी ने कीर्तन च भेटा दिता सी। ओ शस्त्र गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने, प्यारे खालसा जी मेरी बेनती सुन लो, मेरी बेनती सुन लो, मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने थापी दिती, इन्हां दे अंदर वास कीता और शस्त्र कढ़िया, 3-4 सिंह होर सी ओह इन्हां दे नाल हो गए और इन्हां ने छाल मार के बबर शेर, जिवें बबर शेर दे नजारे उत्थे मैं वेखे। गुरु गोबिंद सिंह दी बाणी मैं पढ़दा हुंदा, पाप समूह बिनाशन को कल की अवतार कहावेंगे, तुरकच्छ तुरंग स्पच्छ बटो करकाड़ कृपान कम पावेंगे, निक्षे जिम केर पर्वत ते ता सोग दिवाले पावेंगे, फल भाग पयाए संभल के हरजू हर मंदिर आवेंगे। ओ मैं सुनिया एक तुक, निक्षे जिम केर पर्वत ते, केर दा मतलब बब्बर शेर है, बब्बर शेर जो भुखा हुंदा है ओ जो फिर पर्वत तो पवक मार के छाल मार के जो मैदान च आउंदा है उन्हें फिर जो ना वो पता की लिखे वो जो आप पढ़ते होंगे गुरु नानक साहब का, हां जी सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ, अगे की है सिंह बुके, सिंह फिर गजे ते की होया मिर्गावली पन्नी जाए, मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर पर होआ, ए बाबे का छाल मार के शीशा के पौड़िया तो तलवार इतने फल ली ते जकारे छड़ दे पंज पै पंज के ओ पंज सत पिछे बेचारे मेरे वर्गे वही मगर मगर भजे आउण, ते जदों उन्हें वेख्या दुष्टा भई ये आ गए तलवार इतने रखी बाबे जरनैल सिंह वाली, ओ 4,000 जिहड़ा सी ना फतेहपुरी वाला भज उठा, 10-15 दंद टुट गए, 50 सत्तां गोगे गोडे टुट गए, है जी जो भज उठे नाले ऐ वेखण नाले भजन, ते फिर एक उत्थे खलो गए। इन्हें आख्या गल सुनो असी गुरु गोबिंद सिंह हां, ना असी बीबी नू मारदे हां, ना असी बुढ़े नू मारदे हां, ना असी बच्चे नू मारदे हां, ना असी भजदे नू मारदे हां, असी भजदे नू नहीं मारदे, तुसी प्यो दे पुत्तो खड़ो जाओ नहीं ते असी इधर जाने जिहड़े आ आउंदे ने उहनां नू छड्ड के लाल किले वल भज उठे, उह पहलां ही अगे भज उठे हां जी। 12,000 दुष्ट ए साले बाबा जी ने, मैं ते कहना महाराज इहनां नू वड्डियां होवन, लो जी गुरु गोबिंद सिंह ने दो शब्द में सुना के फिर मैं समाप्ति करनी है, क्योंकि तुम बहुत कुछ सुन रहे हो, 4वें दीवान लगा रज गए होवोगे। श्रवण करो गुरु गोबिंद सिंह की कहते, छतरी को पूत हो।

विषमाद नाद विषमाद वेद विषमाद जीव समाद भेद विषमाद रूप समाद रंग विषमाद रागे फिरे जन विषमाद पौन विषमाद पानी विषमाद अग्नि खेड बिडानी विषमाद धरती विषमाद खानी विषमाद साध लगे प्राणी विषमाद संजोग विषमाद वजोग